उनके नाम है मेजर महादेवन, हवलदार जय कुमार, हवलदार हरी, नायक गोपन, हवलदार अरुण, नायर एटन, अपू कुटे।